नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत

0: करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity, and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues, and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said, had the previous governments foreseen the issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear the brunt for decades. The Home Minister said, the government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सात बजकर एक मिनट स्टूडियो के घड़ी में वक्त में श्रुति श्वेता आप सबके साथ सुन रहे हैं आप जिस कार्यक्रम का नाम है सुहानी सुबह। और रुक करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

7:14 स्टूडियो की घड़ी में वक्त और रुक करते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन पूरे दिन मौसम कैसा रहेगा। तो आमतौर पर जो है बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, कभी कभी जो है बौछार होने की भी पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 घंटे पहले माने 24 घंटे पहले की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 32 के आसपास थी और न्यूनतम तापमान जो है 28.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही। अधिकतम आर्द्रता जो है 96% और न्यूनतम आर्द्रता जो है 76% के आसपास रही। और अगर बात करें बारिश की तो हाँ, कल बारिश जो हुई वो जो है 8.2 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। और आज जो है मछुआरों के लिए कोई अलग से मौसम की चेतावनी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं मौसम का हाल, साथ में बताते हैं कि क्या है आज इतिहास के पन्नों में खास और इस अखबार की सुर्खियों से भी रूबरू कराते हैं आपको। लेकिन उससे पहले सुनेंगे और कुछ नगमे।

जान लेते हैं अब देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन क्यों खास है। तो 1910 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवता की प्रतीक मदर तेरेसा का जन्म हुआ। 1920 में अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन की मान्यता मिली और जिससे महिलाओं को आधिकारिक रूप से मतदान का अधिकार मिला। 1768 ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने अपने जहाज HMS एवेंजर के साथ पहली ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उसके बाद 1883 इंडोनेशिया के काराकाटुआ द्वीप पर इतिहास का सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 1978 में सिगमुंड योन सोवियत अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष जाने वाले पहले जर्मन अंतरिक्ष यात्री बने।

पर अब एक विशेष जो है आप सबके लिए खबर, वो ये कि 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत द्वारा मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को प्रभात 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों के पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का जो है निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों के पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्व ब्यौरे का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को अनुरोध है कि उपयुक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन या फिर के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि दूरभाष नंबर जो है 03322102050 या फिर 03322102612 या फिर 03322102500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत में आवेदनों ईमेलों पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना अनिवार्य है। डाक एवं पेंशन अदालत के उत्तराधिकार आदि किसे संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाता। उद्घोषणा समाप्त हुई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

30 बाजारों में छापे मारी गई। जी हाँ दोस्तों, महानगर में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों और कथित काला बाजारी पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को कोलकाता पुलिस की इन्फोर्समेंट ब्रांच ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। शहर में 10 पुलिस डिवीजन के करीब 30 बाजारों में ईबी अधिकारियों ने पहुंचकर चीनी प्याज समेत कई खाद्य पदार्थ जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमत

0: दूसरी खबर जो आप तक पहुंचाऊंगी वो ये कि सीएम का निर्देश है पूजा से पहले गड्ढे भर जाने चाहिए शहर के। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हर तरफ जहां देखो बस गड्ढे बहुत दिखते हैं। ऐसे में राज्य भर में जहां भी बदहाल और गड्ढों से भरी सड़कें हैं उनकी जल्द से जल्द मरम्मत कराने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इनके नेतृत्व में मंगलवार को नवान में इस मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़े अधिकारियों को भी इसमें हिस्सा लिया इन्होंने भी, और कोलकाता से जिलों तक सड़कों की होगी मरम्मत। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोलकाता सहित राज्य के सभी जिलों के सड़कों की स्थिति की समीक्षा की गई और जिन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं उनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने का निर्देश भी दिया गया है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढे हैं अभी रास्ते में, है ना। 7:45 स्टूडियो की घड़ी में वक्त, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी सुचिश्मिता के साथ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पे, और रुक करेंगे अगली गीत की ओर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सुहानी शुभा और मैं शुचिश्वता आप सबके साथ और 7:53 स्टूडियो की घड़ी में वक्त इस आखिरी गीत के साथ छोड़े जाऊंगी आपको। सुनते रहिए, साथ रहिए, मिलूंगी एक बार फिर आपसे लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद ठीक है 11:10 पे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और

0: विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है वृंदावन

0: के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलम वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 ईयर डेडलाइन फॉर 100% इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 new क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
3: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. Mr. Modi also called for fostering a proactive work culture across ministries and state governments with greater ownership at every level of project implementation. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
2: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. More from our correspondent.
3: Mr. Shah said India must further strengthen its internal security to emerge as a leader in every sector. Home Minister said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमरीकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at the 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
4: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed six key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning nine states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
3: Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doobhal highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doobhal was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, the External Affairs Ministry said that the two special representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, that is 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on 11th August and in the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Kerala is across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. Thiruvonam celebrations began with Onapukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary King Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Eid-e-Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervour in various parts of the country today. Milad Mehfils and Seerat conferences will be held, highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being taken out to mark the occasion. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam and Milad-un-Nabi. In a social media

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह 6ठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मुलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन्नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञान आनंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at the 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank accounts from the 1st of next month. Canada has struck back at the US with retaliatory tariffs on about $20 billion worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply, a report.
4: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as US tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match US level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiation. Canadian Prime Minister Mark Carney accused Washington of trying to subordinate Canada. Vishal Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. The Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, that is the 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on 11th of August and in the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Keralites across the globe are celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. Thiruvonam celebrations began with Onapukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary King Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites, irrespective of caste and religion. Home Minister Amit Shah has extended greetings to the people of Kerala on the occasion of Onam. Sharing a social media post, Mr. Shah prayed that this joyous occasion usher in a year filled with peace, prosperity and well-being for all. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam and Milad-un-Nabi. In a social media post, Mr. Modi expressed hope that this occasion furthers togetherness and joy all around the world. He wished that the spirit of kindness and giving back to the society always guide the countrymen. On to sports. Indian Grandmaster R. Pragyanand cruised into the finals of the Grand Chess Tour's last leg after a 19-9 win over Germany's Vincent Kramer in St. Louis, US. Having won the second classical game, the Indian enjoyed a huge lead of 6 points coming into the final day on which games of shorter duration were played. Pragyanand will take on pre-event favourite and defending champion Fabiano Caruana of the US in the event finale. And that is the end of this news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को लागू करने पर विचार किया। इसके साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य कर्मियों के आदान प्रदान और रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के विकल्पों पर भी चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के उप सचिव रिचर्ड शिम्ट ने वार्ता की सह अध्यक्षता की। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार के प्रभारी राज्य मंत्री उमर हिजरा ने 7वीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भारत के महान वाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इस वार्ता में दोनों देश आर्थिक स्थिति, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, निवेश और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अमरीका के लिए रवाना होंगे, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे।
2: अमरीकी सामानों में स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान शामिल हैं। अमेरिका ने 22 अगस्त से इतनी ही कीमत के कनाडाई सामान पर 50% तक शुल्क लगाया था। कनाडा ने कहा कि वह अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के बराबर ही जवाबी शुल्क लगाएगा। कनाडा ने व्यापार विवाद से प्रभावित कामगारों और कारोबारियों के लिए 7 अरब 50 करोड़ डॉलर के सहायता पैकेज की भी घोषणा की है। कनाडा के अनुसार अमरीका की ओर से रखी गई नई व्यापार शर्तें उसके राष्ट्रीय हित में नहीं थी। इसी वजह से कनाडा ने अमेरिका के साथ जारी गहन व्यापार वार्ता को निलंबित कर दिया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अमेरिका के सीनेटर रिक स्कॉट ने चीन में निर्मित चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी संघीय स्वास्थ्य सेवा निधि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इंटरनेट से जुड़े उपकरण रोगियों की संवेदनशील जानकारी और अस्पताल प्रणालियों के लिए साइबर खतरे उत्पन्न कर सकते हैं। श्री स्कॉट ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस को मेडिकेयर, मेडिकेटेड या अन्य संघीय निधि प्राप्त करने वाले अस्पतालों और क्लिनिक्स को चीनी कंपनियों में निर्मित उपकरण की खरीद करने से रोक देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वहीं ईरान से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल चीन ने अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया है। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: मशहूर अमेरिकी कंट्री सिंगर और गीतकार डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। अपनी खास आवाज, बेहतरीन गीतों और अलग अंदाज के लिए वे दुनिया भर में मशहूर थी। उन्होंने सैकड़ों गीत लिखे जिसमें जोलिन कोट ऑफ मेनी कलर्स जैसे क्लासिक गाने शामिल हैं जिनकी दुनिया भर में 10 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज अलग अलग स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद ए मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उम्मीद जताई कि ये अवसर दुनिया भर में एकता और खुशी को बढ़ावा देगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। उन्होंने रैपिड के दोनों मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई और ब्लिट्ज के पहले मुकाबले में भी जीत दर्ज की। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हैमर थ्रो में तान्या चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनुष्का यादव 61.03 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रही। महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में कविता वी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन के कनाडा दौरे पर टोरंटो पहुंची। कनाडा की लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिका के सामानों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय किया। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की

0: 53 वी बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री स्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना नीस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे को भरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल से खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से पराजित किया। वहीं फाइनल मैच में प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच मैच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far, and over 6,52,000 applications have been submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
4: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as US tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match US level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiation. Canadian Prime Minister Mark Carney accused Washington of trying to subordinate Canada. Vishal Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. The Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on August 11th and in the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the virtues of mutual learning and listening. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi remarked that those who are eager to learn and listen to one another are praised by the wise and are free from selfish pursuits and ulterior motives, and they prosper in happiness in every way. Eid Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervour in various parts of the country today. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi have extended best wishes to the countrymen, especially the Muslim community. Keralites across the globe are celebrating Thiruvanam today. Thiruvanam celebrations began with Unnapukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. On the occasion of Onam, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings and best wishes to all the citizens. In men's cricket, host Sri Lanka were 22 for 1 against India in their second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India forced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. Resuming the penultimate day at 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

11:11 स्टूडियो के घड़ी में वक्त मैं आप सबके साथ सतीश मिता 101.1 FM गोल्ड खड़ा सोना कार्यक्रम सुन रहे हैं आप। लो आ गई उनकी याद और आज हम किन्हें याद करेंगे बिल्कुल बताऊंगी और बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं आपको। मैं जैसे ही गीत सुनवाऊंगी आपको खुद पता चल जाएगा कि आज हम किन की बात करेंगे। वैसे एक हिंट दे सकती हूँ कि आज हम जो है एक जोड़ी की बात करेंगे और जोड़ी में कौन है ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी लेकिन इस गीत के उस पार। सुन रही है साथ रहिए 101.1 FM गोल्ड खड़ा सुना कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम खूबसूरत से इस महफिल में आपका जहाँ स्वागत है, और मैं आपकी दोस्त सुचिश्मिता, और आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद। संगीत कभी कानों से होकर दिल तक पहुंचता है तो कभी सीधे यादों के दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई धुन सुनते ही हमें कोई फिल्म याद आ जाती है या फिर कोई किरदार याद आ जाता है, और कभी कभी तो वो पूरा दौर ही आंखों के सामने आ जाता है। आज की हमारी ये जो महफिल है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो कारवा है, वो समर्पित है बॉलीवुड के उस शानदार संगीतकार तिकरी को, जिसने हिंदी फिल्म संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई, शंकर एहसान लॉय। तीन अलग अलग संगीत संस्कृतियां, तीन अलग हुनर, लेकिन ये जब एक साथ हुए तो ये तीनों साथ आए तो बना एक ऐसा संगीत जो भारतीय शास्त्रीयता, रॉक, जैज, लोक धुनों और आधुनिक साउंड का खूबसूरत संगम बन गया। ये तो चलिए याद करते हैं आज इस बेहतरीन जोड़ी को, शंकर एहसान लॉय की जोड़ी को। रुक करते हैं अगले गीत की ओर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

यार बीच के 32 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद बातें हो रही हैं शंकर एहसान रॉय की। उनके गाने में कमाल की ऊर्जा दिखती है। 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है ने युवाओं की सोच दोस्ती और रिश्तों को बिल्कुल ही नए अंदाज में पर्दे पर पेश किया। इसके अलावा और इस फिल्म के संगीत ने भी कुछ ऐसा ही किया, युवा मन की धड़कनों को आज आवाज़ दी और आज भी ये गाने जो हैं हम सबके मन में कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। शंकर एहसान रॉय की जोड़ी नहीं बल्कि कहें तो ये टिकरी है। वहीं से हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में एक खास पहचान बनाने लगी इन तीनों की जोड़ी। लेकिन इन तीनों की कहानी शुरू होती है इससे भी बहुत पहले। शंकर महादेवन जिनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई और आधुनिक संगीत की ऊर्जा दोनों है। एहसान नूरानी गिटार के उस्ताद, उन्होंने फिल्म संगीत में रॉक और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट की खूबसूरती से जगह बना दी। और लॉय मेंडोसा कीबोर्ड संगीत संयोजन और धुनों की दुनिया में अपनी अलग पकड़ रखने वाले कलाकार। तीनों की संगीत यात्रा अलग अलग रास्तों से होकर आई लेकिन मंजिल एक थी, ऐसा कुछ संगीत रचना जो लोगों के दिलों में जगह बना ले, बस और ये जगह कभी खाली ही ना हो। और दोस्तों उनकी खासियत यही रही कि उनके संगीत में आपको जो है अपने आप में एक स्टेटमेंट है, उनमें सादगी है, कानों को चौंका देने वाली आधुनिकता है और साथ में बेहद खूबसूरत म्यूजिक। अगर बात करें दोस्ती की तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये फिल्म भी आप सबको याद ही होगा जिसमें हमने दोस्ती की एक अलग पहचान देखी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की गीत अगर याद करें तो सेनेटर में गीत में जो है स्पेनिश रंग भी मिला, भारतीय अंदाज भी और दोस्तों की मस्ती भी। यही तो है शंकर एहसान लॉय की खासियत।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

9:45 स्टूडियो के घड़ी में वक्त कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ और बातें हो रही हैं शंकर एहसान लॉय की।

तो दोस्तों, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये जीवन के दर्शन बन जाते हैं। हाँ, मैं वैसे ही एक गीत की बात कर रही हूँ, गीत कल होना हो से। शंकर एहसान लॉय के इस फिल्म में जो है भावनात्मक संसार को संगीत के जरिए इतनी गहराई दी कि आज भी इस गीत को सुनते ही मन कहीं ठहर सा जाता है। और यही संगीत

संगीत की एक खासियत ये भी है कि इसमें कई विविधताएं हैं। उन्होंने एक तरफ दिल चाहता है जैसी युवा ऊर्जा दी फिल्मों को और आवाज दी गीत ऐसे बनाए, तो दूसरी तरफ कल हो ना हो जैसे भावुक संगीत दिए। उन्होंने रॉक ऑन के जरिए रॉक संगीत को हिंदी सिनेमा में कहीं कहानी से जोड़ा, तो फिर आया ऐसा गीत जिसे सुनकर जैसे जिंदगी खुद हमें आवाज दे रही हो। क्या शानदार सफर है ना। शंकर एहसान लॉय के संगीत में एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, वो ये कि संगीत सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, संगीत सीमाओं से सीमाबद्ध नहीं है। भारतीय संगीत की जड़ें भी हैं, पश्चिम संगीत की प्रभाव भी, और तभी सबसे बड़ी बात समय के साथ बदलने की क्षमता भी। उनकी धुनों में अलग अलग पीढ़ियों को अपनी अपनी तरह के पसंद के गीत सुनने का ऑप्शन भी तो मिलता है।

दोस्तों अब एक जरूरी घोषणा। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक सेवाओं एवं डाकघरों में से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता के अनुरोध है कि वो उपयुक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित रहे। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि के दूरभाष 03322120250 या फिर 03322120612 या फिर 03322120500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत से आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना जरूरी है। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार एवं उससे आदि से संबंधित अधिक विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गीत के साथ मैं सुचिष्मिता कहूंगी आप सबको टाटा एंड बाय बाय। बातें हुई आज शंकर एहसान लॉय की और मैं लो आ गई उनकी याद से कहूंगी अब आप सबको टाटा एंड बाय बाय। 101.1 FM गोल्ड कड़ा सुन रहे थे आप कार्यक्रम मेरी यानी सुचिष्मिता के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और

0: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार मोबिलिटी औद्योगिक बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादति के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. India has rejected the references in the report of UN Committee on the elimination of racial discrimination, terming them politically motivated and highly malicious. In response to media queries on the committee's report following India's 11th periodic review under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, ICERD, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India participated in the spirit of constructive engagement.

0: in 1955 while trying to enter Goa with demand for inclusion in India. The India Meteorological Department, IMD, has said that subdued rainfall activity is likely to continue over peninsula India during the next week. Heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. The Met Department has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 670,000 cubics of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts, with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the host managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. And Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the Midday News.
2: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath, main Farhat Naz. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया. कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया. 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे. भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया. कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया. ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है. पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना. और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा. अब समाचार विस्तार से. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है. कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही.
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है. भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है. तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं.
4: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी.
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है. भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में

0: भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: Highly import dependent।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश के प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC NET, CSIR NET तथा ICS

0: आर ए आई ई ई ए पी जी और ए आई सी ई पी एच डी 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल

की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने 0 से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779709107500 पर संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। इधर बिहार में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ के कारण हुई जानहानि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत और तेजी से विकसित हो रही पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के अपार अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती सीतारमण ने ये बात कही।
2: India today stands as the fastest. भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
3: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स ना लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरु ओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में केरला वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलोअन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. More than 100 Indians are among 384 tourists reported missing in Nepal after flash floods in the Bhotkoshi River hit the Rasuwa region near the Tibet border this morning. According to the Nepal Tourism Board, NTB, the 384 missing tourists include 291 foreign nationals and 93 Nepali citizens. It said the foreign nationals are from several countries, including 105 from India and others from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa, and the Netherlands. However, the NTB clarified that the figures are preliminary and are currently being verified and cross-checked with travel agencies, local authorities, and other concerned agencies. According to local media reports, seven people have died following the massive flash flood. The Nepal Tourism Board has also issued emergency contact numbers for tourists and their families seeking information or assistance. The emergency contacts include the toll-free number 1234, hotline 1144, and the tourist police number 9851-289-445. The Indian Embassy in Kathmandu also issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807 and +977 970 910 7500. According to official sources, India is preparing to send relief material as soon as possible to Nepal. Prime Minister Narendra Modi today spoke to his Nepalese counterpart, Balendra Shah, and conveyed condolences at the loss of lives due to the floods in Nepal. In a social media post, Mr. Modi said the people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time. He said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. Bihar has stepped up flood preparedness following flash floods in Nepal. Six districts of the state, West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali, have been placed under heightened vigilance along the Gandak River system. People living in low-lying areas of Bagaha in West Champaran and Vaishali districts have been urged to move to safer places at the earliest. In view of the possibility of increased water flow in the Gandak River, an NDRF team has been deployed in Gopalganj and Bethia, while another team has been kept on standby in Muzaffarpur. Chief Minister Samrat Chaudhary said a high-level team has been constituted to monitor the situation closely. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood threat in Bihar due to torrential rain and glacier burst in Nepal. The Home Minister assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, Eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain. The Indian Medical Association, IMA, has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza A, H1N1 cases, saying the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के सुहाने से इस पहर में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। और दोस्तों, आज मैं लेकर चलूंगी आप सभी को संगीत की उस दुनिया में जहां से मैं लेकर आई हूं कुछ चुनिंदा नगमे, जहां हर गीत अपने साथ एक कहानी, एक एहसास और ढेरों खूबसूरत यादें लेकर आता है। शाम का समय हो और हाथ में चाय की प्याली, तो क्यों ना कुछ ऐसी पुरानी धुनों का साथ हो जो मन को हल्का कर दे और चेहरे पर मुस्कान ले आए। तो दोस्तों, आज की संगीत यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें है चिट्ठियों का इंतजार, अपनों का संदेश और उस दौर की मासूमियत जब डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं बल्कि दूर बैठे किसी अपने की खबर लेकर आता था। तो जरा याद कीजिए वो दिन जब किसी के नाम की चिट्ठी आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और डाकिये की आवाज सुनते ही कदम अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ जाते थे। तो चलिए इस प्यारी सी याद के साथ शुरू करते हैं चाय एंड क्लासिक्स और सुनते हैं फिर पलकों की छांव का ये बेहद लोकप्रिय गीत। और हाँ दोस्तों, आवाज को थोड़ा और बढ़ा दीजिए क्योंकि चाय की एक चुस्की लीजिए और साथ ही साथ खो जाइए उन खूबसूरत यादों में जहाँ संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता था, महसूस किया जाता था।

एक आवश्यक सूचना 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरे का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निर्देशक, डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg-wb@indiapostpost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapostpost.gov.in इनके माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212061 या फिर

3 3 दो दो एक दो 0500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों सूचना समाप्त।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

धीमी सी धुन, खूबसूरत आवाज और ऐसे बोल जो सीधे दिल तक पहुंच जाए। और पुराने फिल्मों की यही तो खूबसूरती थी, गीत कहानी से अलग नहीं होते थे बल्कि कहानी का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन हर पुरानी याद उदास हो ऐसा भी तो नहीं। कुछ यादें चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, कुछ पुरानी शरारतें याद दिलाती है और कुछ गीत हमें उसी हल्के फुल्के अंदाज में वापस ले जाती है। कैसे, तो चलिए अगले गीत के द्वारा समझाती हूँ।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों

0: किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल सन 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एससी एसटी वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना था। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीनफील्ड परियोजना का अर्थ है ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सेवाओं या फिर व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी और एक एससी या एसटी उद्यमी को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं लगानी होती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इसमें कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है। इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना से लाखों महिलाओं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके आसपास कोई महिला एससी या एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें। तो दोस्तों, आज आपने परियोजना प्रस्तुति में सुना स्टैंड अप इंडिया के विषय में।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

किया है कभी कोई समझ ही नहीं पाया। पर दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब पहले जो होता था, गीत सुनने का एक अपना ही, एक अलग ही इंतज़ार होता था। जब कहीं किसी पसंदीदा कार्यक्रम में गीत बजने का हमेशा इंतज़ार होता था, और अगर गीत पूरा सुनने से पहले ही कोई काम आ जाए तो मन में बस यही रहता था कि काश यह गीत फिर कभी सुनने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास संगीत की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद इंतज़ार की वो खूबसूरती कहीं पीछे छूट गई। तो आज उस इंतज़ार को भी याद करते हैं एक ऐसे ही गीत के साथ, जिसमें प्यार भी है, शरारत भी, और एक प्यारी सी मासूमियत भी।

0: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: तो दोस्तों आप एक गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्म टॉन से, और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद अंजान ने, और संगीत से पिरोया था कल्याण जी और आनंद जी ने। दोस्तों किसी पुराने गीत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? शायद यही कि वो आपको उस जगह वापस पहुंचा देता है जहां आप कभी हुआ करते थे। एक पुराना घर, एक खिड़की के पास बैठा कोई अपना, और कॉलेज के दिनों की कोई शाम, या फिर दोस्तों के साथ बिताया हुआ कोई पल, और फिर अचानक से कोई गीत बजता है और लगता है अरे ये तो मेरी कहानी है। ऐसे ही भावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए है बिल्कुल अगला गीत। दोस्तों किस गीतों को सुनने में ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा सा ठहर गया है, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई शोर, बस संगीत और उसके साथ चलती हुई कुछ पुरानी यादें। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 5:51 और 35 सेकेंड, यानी कि घड़ी की सुई बोल रही है बिल्कुल, बता रही है इशारा करके कि ये जो कार्यक्रम है चाय एंड क्लासिक्स का पहला सेगमेंट अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ठीक 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार, और ठीक 6:05 में सुनेंगे न्यूज़ इन इंग्लिश, और 6:10 में सुनेंगे कार्यक्रम विश्लेषण, और उसके बाद ठीक 6:20 पर मैं फिर से लेकर हाजिर हो जाऊँगी कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स आप सभी के लिए। तो दोस्तों यूँ ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर अपनी दोस्त ज्योति के साथ, यानी कि ये पहले सेगमेंट का ये आखिरी गीत, लेकिन मैं फिर 6:20 में आप सभी से जुड़ चलूंगी। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए और यूं ही साथ बने रहिए कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, और अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए बस थोड़ी ही देर के लिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779831316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी

0: won from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज के कार्यक्रम का विषय है ई श्रम पोर्टल के 5 वर्ष, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें कृषि मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल है। इन श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गयी। आज 26 अगस्त 2026 को ई श्रम पोर्टल अपने 5 वर्ष पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों में ये केवल श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने वाला पोर्टल नहीं रहा, बल्कि रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। अब तक ई श्रम पोर्टल पर 31.89 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें 54.28% महिलाएं और 45.72% पुरुष हैं। तो ई श्रम पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी, इसने असंगठित श्रमिकों के लिए क्या बदलाव किए हैं और आने वाले समय में ये सामाजिक सुरक्षा के पूरे तंत्र को किस तरह मजबूत कर सकता है, इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
3: भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका काम भी अलग अलग तरह का है। कोई कृषि मजदूर है, कोई निर्माण कार्य करता है, कोई घरेलू कामगार है तो कोई सड़क किनारे सामान बेचता है। इसके अलावा प्रवासी श्रमिक और गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर भी इस व्यापक श्रेणी का हिस्सा है। इन सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने और उनके बारे में एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC द्वारा विकसित ई श्रम पोर्टल ने देश का पहला आधार प्रमाणित नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया। पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले प्रत्येक श्रमिक को 1/12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है अलग मंत्रालयों और विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक दूसरे से जोड़ना और पात्र श्रमिकों तक उनका लाभ पहुंचाना। इसका मतलब है कि श्रमिक जब एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाता है तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है। ई श्रम पोर्टल का विस्तार केवल रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा। 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। वन स्टॉप सॉल्यूशन पर 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाएं शामिल हैं। ई श्रम रजिस्ट्रेंट पोर्टल के माध्यम से PMSBY और PMJJBY में भी नामांकन कर सकते हैं। PMSBY के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए और अधिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलता है। वहीं PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। ई श्रम पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस यानी NCS से भी जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप से जुड़ी सेवाओं तक पहुँच मिलती है। माई स्कीम के जरिए श्रमिक अपने लिए पात्र सरकार योजनाओं की पहचान भी कर सकते हैं। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ई श्रम पोर्टल के 5 वर्षों में इसकी पहुंच लगातार बढ़ी है। 18 अगस्त 2026 तक पोर्टल पर 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54.28% है, जबकि पुरुषों की हिस्सेदारी 45.72% है। उम्र के आंकड़ों पर नजर डालें तो 55.21% रजिस्टर्ड श्रमिक 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं, वहीं 24

0: 18% 40 से 50 वर्ष और 20.53% 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी 0.08% है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
1: 31,89,00,000 रजिस्ट्रेशन, देश के असंगठित श्रमिकों तक बढ़ती पहुंच, ई श्रम पोर्टल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है इसका व्यापक कवरेज। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन करने वाले श्रमिकों में सबसे अधिक संख्या कृषि, घरेलू और हाउस होल्ड वर्क, निर्माण तथा परिधान से जुड़े श्रमिकों की है। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के तरीके में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सबसे प्रमुख माध्यम रहे हैं। इसके बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन का स्थान है। ई श्रम पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी असंगठित श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर कर सकता है, बशर्ते वो इनकम टैक्स पेयर ना हो और EPFO या ESIC का सदस्य ना हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना बेहतर है। श्रमिक खुद ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या स्टेट सेवा केंद्र से भी मदद ली जा सकती है। राज्य सरकार के फील्ड अधिकारी भी जिला और उप जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। ये डेटा भविष्य में इन श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपाय तैयार करने तथा लागू करने में मदद कर सकता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी पोर्टल में परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। वहीं निर्माण श्रमिकों का डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने की सुविधा है। इससे उन्हें संबंधित बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यानी BOCW बोर्ड्स में रजिस्टर करने में मदद मिल सकती है। इस तरह ई श्रम का उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि कितने श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, कौशल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना भी है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: ई श्रम पोर्टल ने 5 वर्षों में एक बड़े राष्ट्रीय डेटाबेस का रूप ले लिया है। 31.89 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाते हैं। लेकिन किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता केवल उसके आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वो लोगों को वास्तविक सेवाओं और लाभों से कितनी आसानी से जोड़ पाता है। ई श्रम को इसी दिशा में एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आइए सुनते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट।
2: 5 वर्ष पूरे होने के साथ ई श्रम पोर्टल भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के डिजिटल ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सेवाओं और योजनाओं को जोड़ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इसके साथ रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन की सेवाएं भी जोड़ी गई हैं। इसका उद्देश्य यह है कि श्रमिक को अलग अलग सरकारी पोर्टल पर जाने की जरूरत कम हो और वह एक ही स्थान से अपने उपलब्ध योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सके। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर श्रमिक अपनी उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देख सकते हैं और पहले से प्राप्त लाभों को भी देख सकते हैं। पेंशन के लिए पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से जुड़ सकते हैं, जिसमें पात्रता के अनुसार 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है। ई श्रम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रवासी श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के लिए बेहतर समन्वय। ई श्रम का उद्देश्य इसी तरह एक ऐसे डिजिटल सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहचान हो, उनकी जरूरतों को समझा जा सके और उन्हें उपलब्ध सरकारी सहायता तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ई श्रम ने एक श्रमिक रजिस्ट्री से आगे बढ़कर वन स्टॉप डिजिटल सॉल्यूशन का रूप लिया है, जहां सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, स्किलिंग, अप्रेंटिसशिप और पेंशन से जुड़ी सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है। आने वाले समय में रजिस्टर्ड श्रमिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना, नए नए श्रमिकों को जोड़ना, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसी नई श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना और डेटा के आधार पर बेहतर नीतियां बनाना महत्वपूर्ण होगा। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में भारत के असंगठित श्रमिकों के लिए एक समावेश और तकनीक आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत कर रहा है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने, तकनीकी सहयोग दिया है मोहित सिंह ने। नमस्कार।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना पर। तो दोस्तों शाम अब धीरे धीरे ढलने लगी है, लेकिन हमारी यादों का सफर अभी बाकी है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, मगर उनकी याद बहुत लंबे वक्त तक हमारे साथ रहती है। और कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो पहली बार सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ उनका अर्थ और गहरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसी एहसास के साथ अगले नगमे की ओर रुख करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, इन आवाज़ों को, इन गीतों को कौन भूल सकता है। फिलहाल दोस्तों ये बता दूं कि ये शाम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। तो दोस्तों आज हमने बात की उन यादों की जो वक्त के साथ पुरानी तो हो जाती है लेकिन दिल से कभी नहीं जाती। कुछ गीत हमने सुने, कुछ यादें हमने महसूस की और शायद इस समय आप भी अपने अतीत की किसी खूबसूरत शाम तक होकर आए होंगे। जो जाते जाते, तो दोस्तों जाते जाते ये गीत तो मैं सुनाना चाहती थी पर क्या करूँ, ये समय साथ नहीं दे रहा। जी हाँ, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 6:27:35। तो दोस्तों शाम ढल रही है, चाय का प्याला शायद अब खाली हो चुका है लेकिन उम्मीद है कि इस सफर ने आपके दिल में यादों की एक प्यारी सी महफिल जरूर सजी होगी। कुछ पुराने गीत मगर उनके एहसास कभी पुराने नहीं होते। कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं मगर उनकी यादें हमारे पास रह जाती हैं। और कुछ शामें बस शामें नहीं होती, वो ज़िंदगी की किसी खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज चाय एंड क्लासिक से मुझे यानी कि अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और शाम, किसी और गीत के साथ और यादों की किसी नई खिड़की के पास। तो दोस्तों तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने यहाँ पुरानी यादों को संभाल कर रखिए। और जाते जाते दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी से ठीक मैं मिलने आऊंगी 7:02 पे। जी हाँ, कार्यक्रम छायालोक लेकर सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। यानी कि बस थोड़ी ही देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत, पर हाँ मैं तो जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइए। यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ प्रकाश चावला जी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स नियरली 200 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,250। Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख, सेंसेक्स लगभग 200 अंक लुढ़का और निफ्टी 24,250 से नीचे बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा में भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित किया, कहा भारत का कायाकल्प ढांचागत है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से संभव हुआ, और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी।

0: an important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 183 अंक यानी 0.24% गिरकर 77,473 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 127 अंक यानी 0.52% लुढ़ककर 24,208 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में मामूली बदलाव से 0.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप में 0.8% का उछाल देखा गया। इससे पहले बाजार की शुरुआत मिली जुली रही और शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे चला बिकवाली का दबाव बढ़ता गया, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट में आ गए। सत्र के उत्तरार्ध में तेज गिरावट से सूचकांक में और भी नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices ended in negative territory today. The Sensex fell 183 points or 0.24% to close at 77,473. The Nifty lost 127 points or 0.52% to settle at 24,208. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Small-Cap 100 index rose 0.8%. Earlier, the markets opened on a mixed note and traded with modest gains. However, as the session progressed, selling pressure intensified, dragging both benchmark indices into negative territory. The decline gathered momentum during the latter part of the session, with the indices extending their losses and eventually closing to their respective days low levels.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस और भारतीय एयरटेल 1.9%, लार्सन एंड टूब्रो में 1.8% और पावर ग्रिड 1.5% नीचे आया। इसके उलट कोटक महिंद्रा बैंक में 3.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.9% और एक्सिस बैंक में 1.3% की तेजी दर्ज हुई।
0: इन द सेक्टोरल इंडिसेस ऑन द BSE, 16 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप लैगर्ड्स, टेलीकम्युनिकेशन लॉस्ट 1.3%, आईटी फेल 1% एंड फोकस्ड आईटी लॉस्ट 0.9%। इन कॉन्ट्रास्ट, मेटल एज वेल एज कमोडिटीज रोज 1.4%, PSU Bank increased 0.8% and financial services added 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,330 companies advanced, shares of 1,990 companies declined.

0: declined, whereas shares of 220 companies remained unchanged.
1: ईद मिलाद के अवकाश के कारण आज भारतीय मुद्रा बाजार बंद रहा. पिछले सत्र में अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 95.41 रुपए पर बंद हुआ. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है. प्रकाश जी, इस पूरे महीने अगर अभी तक का सेंसेक्स और निफ्टी का कारोबार देखें तो हम देख सकते हैं कि गिरावट का रुख देखने को हमें मिल रहा है. क्या कारण रहे जो इसे महज मुनाफा वसूली माना जाए या FIS या DIS ने हाथ खींच लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ज्यादा गिर सकता था लेकिन DIS ने कई मौकों पर हाथ लगाया है, संभाला है मार्केट को.
2: चलो बात करते हैं आज से शुरुआत करते
1: जी.
2: हैं आज के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, जो इंडाइसिस हैं, नीचे गिरे हुए हैं. लेकिन आपने अपने दोनों ने रीड आउट्स में पढ़ा कि जो ब्रॉडर मार्केट है उन दोनों में, फॉर इंस्टेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगर हम डेटा देखें तो उसमें 1966 शेयर्स एडवांस हुए हैं और उसके मुकाबले में 1548 शेयर्स डिक्लाइन हुए हैं
1: जी.
2: तो क्या क्या एक माहौल है. और जब जबकि आपका NSE जो इंडेक्स है, NSE निफ्टी 50, वो डाउन हुआ है 127 पॉइंट से
0: जी.
2: और ब्रॉडर मार्केट आपको ग्रीन दिखा रही है
1: जी.
2: तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, बड़ा रुचि वाला फेज है. और जो बड़े शेयर्स हैं, जो लार्ज कैप शेयर्स हैं, जो निफ्टी 50 में आते हैं या सेंसेक्स में आते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी मुनाफा वसूली हुई होगी. लेकिन जो स्मॉल कैप्स हैं, मिड कैप्स हैं, कुछ सेक्टोरल हैं, उनमें ये जाहिर हो रही है आज की बात कि अब बात करते हैं जो आपने पिछले कुछ दिनों या महीनों की बात करी. ये बात बिल्कुल सच है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थोड़ी थमी है अभी, हल्का फुल्का ग्रीन ग्रीन कभी दिखता है उनका. और ये बात सच है, उसके कई ग्लोबल रीजंस हैं. हमारी वैल्यूएशन भी उनको महंगी लगती है. और कुछ AI का प्ले जिसको बोलते हैं कि हमारे जो IT स्टॉक्स हैं, AI इस टाइम उसमें चलन में है. पूरे संसार में AI में चलन है. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इन्वेस्टमेंट उसमें जा रहा है. और उसकी जो AI की वैल्यू चेन है, जिसमें जिनको एक बोलते हैं हाइपर स्केलर्स, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं, फिर उन उसी वैल्यू चेन में आते हैं चिप मेकर्स, फिर उसी वैल्यू चेन में आ गया प्राइवेट इक्विटी. तो ये सारा AI का जो प्ले है, उस प्ले को कहीं ना कहीं हमारे इंडियन IT सिस्टम के अपोजिट में रखा जा रहा है. ठीक है, हाँ, ऐसा इंप्रेशन किया जा रहा है हमारा इंडियन IT सिस्टम उसका एज इफ पार्ट नहीं है
1: जी.
2: तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है. लेकिन अब क्या है कि कंसर्न्स आ रही हैं AI के इन्वेस्टमेंट को लेके. वहाँ का जो शेयर होल्डर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो भी उनको क्वेश्चन, उनके दिमाग में एक तरह का डाउट आ रहा है कि जो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनियाँ उसमें कमिट कर रही हैं, उसका रिटर्न हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो एक तरह का भय का वो माहौल बना हुआ है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि AI कोई ख़त्म हो जाए. AI इज़ हेयर टू स्टे. लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक सा फेज है, वी हैव टू लिव विद इट.
1: आपने वैल्यूएशन की बात की, तो क्या भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय है?
2: चिंता की बात नहीं है. एक चीज महंगी सस्ती की बात होती है. मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम है, हमारे शेयर्स अभी भी, हमारे शेयर्स कई ऐसे हैं जो 100 PE पे मिल रहे हैं
1: जी.
2: अब कोई आदमी 100 PE पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इन्वेस्ट करेगा, तो एक तो होता भाव में जब आप चलते हैं, मोमेंटम इतना बढ़ जाता है तो उसमें भाव में जब आप फंस जाते हैं,
1: भावनाओं में बहना,
2: हाँ, तो ये अच्छा नहीं होता. तो वो अपना एक उनका एक प्रूडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें नहीं बैठते तो नहीं बैठते, इसमें क्या प्रॉब्लम है.
0: प्रकाश जी, वी हैव सीन दैट द मार्केट्स हैव बीन रिएक्टिंग अ लॉट टू द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, स्पेशली टू द यू नो द मूवमेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस. नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट international crude oil prices have eased to a certain extent, we still see that the markets did not react to that. Markets, you know, normally when that happens, markets react a little positively to the sliding, you know, to the decline in the international crude oil prices. But that's not happened right now. Do you think that's also because to do with the fact that investors and markets overall are still a little wary of the situation between US and Iran, or the continuing stalemate between the two sides, and therefore the decline in or the slide in international crude oil prices is not really reflecting in a positive movement in the markets?
2: Well, definitely there's the situation in the Middle East continues to remain volatile,

0: And you talked about the crude oil prices. Mm. Crude oil prices also continue to remain volatile. It's only today that you see a slight dip in the crude oil price in the benchmark below 90, and then immediately you see the result in the market, especially our market. And whenever you have this situation where crude oil prices soften, rupee improves against dollar for logical reasons.
1: Yes,
0: right. So the situation in the Middle East continues to remain highly unpredictable, volatile, and then leading to other geopolitical and geoeconomic. You have this tariff wall war, and the tariff wall. Somebody wants to erect a tariff wall, the other wants to break it.
1: Yes.
0: So you have this situation which is not very conducive for the investment climate, so to speak.
1: Yeah. So if you look at these sectoral indices on the BSE today, we see that IT fell 1% and focused IT lost 0.9%. Again, I'll come back to geopolitical situation. We have the US for now has paused, you know, put a pause on the release or rather, you know, release of the visa. They have the US has now paused the visas across all sections. And for Indian markets or for India, you know, all those IT sector is a big earner. So do you think that the slide that we're seeing in the IT sector today, if we talk about the sectoral indices, is to do with the fact that the US has right now put a pause on visa appointments?
0: Isle, when it comes to IT sector anyways had remained under pressure.
1: Okay. Yeah.
0: For various reasons, right? And several of the IT stocks are available even today at a very attractive price to earning ratio. Sometime you might say mouth watering kind of valuation. But when it comes to today's movement of IT stocks, I think it's a definitely, I'll agree with you, it's a knee-jerk reaction to this very stringent kind of measures being initiated by the US, because after all our entire IT paradigm is based on H-1B visas and, you know, movement of people, movement of, so naturally it's a knee-jerk reaction. One, it remains to be seen how it plays out. Hopefully things should clear out in a few days.
2: Right. Prakash ji, banking aur financial sector jo hai, aapko kya lagta hai ki ye market ko mazbooti de rahe hain aise samay mein jab tamam banking ki jo pranaliyan hain un par bharosa kare ya na kare ye bhi baat aa jati hai, aur kahin na kahin jo ओवरऑल जो हम अगर देखते हैं पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने जितना बैंकिंग में एस्टेब्लिशमेंट किया है वो सपोर्ट कर रहा है?
0: देखिए, हमारा जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है बहुत अच्छी सिचुएशन में है, उनकी बैलेंस शीट बड़ी अच्छी है. और जहाँ तक ये सवाल है कि डे टू डे मूवमेंट का, हमारी जो इंडियन बैंकिंग है पूरा, नॉट ओनली बैंकिंग द एंटायर फाइनेंशियल
2: इंस्टीट्यूशन
0: सिस्टम, NBFCs कंपनीज जो हैं, कुछ अच्छी कंपनीज हैं, तो ये कंपनीज बड़ा अच्छा कर रही हैं. और जहाँ तक डे टू डे मूवमेंट का सवाल है, जैसे अनुभा जी ने जिक्र किया कि क्रूड ऑयल का, जैसे ही क्रूड ऑयल में मूवमेंट आती है बैंकिंग, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर, तो जैसे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की बात होती है तो बैंकिंग में उसका असर पड़ता है. तो ये है, बाकी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर हमारा बड़ी अच्छी हेल्थ में है. हमारा जो NPA सिचुएशन है, जो नॉन परफॉर्मिंग, बड़ी वेल विद इन कंट्रोल है. और अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, मझोले बैंक्स हों, छोटे बैंक्स हों, कोई दिक्कत नहीं है. वही एक सेक्टर है विच इज वेरी गुड.
2: आपने क्रूड ऑयल का जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन अभी बन रही है, ऐसे में ये जो चीजें हैं ये कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं?
0: ये चीजें माने,
2: मतलब कहने का कि हमारी जो जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं क्रूड ऑयल से लेकर के, क्रूड ऑयल की
0: हमारी इकोनॉमी के लिए कितना,
2: जी हाँ, क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो भी चीजें हम देख रहे हैं इनको अगर आप थोड़ा सा मिक्स करें तो.
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, क्रूड ऑयल के दाम थोड़े सॉफ्टन हुए हैं, अभी भी 90 के आसपास है, हमारे लिए वो अच्छी चीज नहीं है. हम चाहेंगे ये 80 के नीचे आए, 80 के नीचे आए.

0: reading for gauging
1: our equivalent of CPI.
0: Exactly. Yes. And then there is a very important, very major chip making company which is going to come out with its quarter two results. And also the Jackson Hole, there's a US Fed symposium which is going to begin from tomorrow. So all eyes are, you know, the investors I think are now looking at these three things to figure out what is going to happen, how the US economy is going to go forward, and what are the signals and messages that are going to come out of Jackson Hole.
1: Let's start with Jackson Hole.
0: Okay.
1: So Jackson Hole, Kevin Wash's speech is going to take place on Friday.
0: Yes.
1: And no policy announcement is expected. Yes. It doesn't happen that way.
0: People still look for signals and messages.
1: Yes. Signals. Since it is, I think it is his first Jackson Hole meeting after he took over as the Fed chair. Knowing so far his nature, people don't expect that he'll come out so clear. Even in the markets would like him to come clear in a clear communication as to what is going to be his policy, whether he's going to go for a rate hike.
0: Yeah,
1: and that's very important. Because market wants to know whether you are going to go for a rate hike or not.
0: Right.
1: And the rate hike would also depend on the inflation data, which you referred to right away, that it's going to come out anytime soon. And the third thing you talked about, NVIDIA's results, isn't it? Now, NVIDIA is a huge company, and either way, it's going to be interesting for Indian stock market.
0: Right. Let's move on to another story. Canada has imposed counter tariffs of up to 50% on U.S. goods worth $27.6 billion after suspending trade negotiations with Washington. The counter tariffs will take effect on September 8th and cover steel, dairy products, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, electronics and other goods. The Canadian tariffs will be set at 15%, 25% and 50%, matching the corresponding U.S. rate for each product, targeted under American Section 338 and Section 232 tariffs. Ottawa has also unveiled a $7.5 billion support package for workers and businesses affected by the escalating trade dispute. A very quick comment from you, Prakashji, on this. Although this is, like we were discussing earlier, the trade war is essentially between the U.S. and Canada. And Canada is the biggest trading partner. Canada's biggest trading partner is the U.S. But do you see this trade war affecting the rest of the economies and spilling over some spillover effect?
1: Well, it sends signals. Mm-hmm. The way Canada is handling this situation. And it also, then you have also with the kind of next month, Xi and Trump are going to meet again. So it sends signals as to what kind of economic scenario is unfolding before us. And then accordingly, countries after countries need to put up their strategies together.
0: Right.
2: ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने होर्मुज जल डमरों मध्य से गुजरने वाले जहाजों के यातायात के प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की. ईरान अमेरिका संघर्ष शुरू होने के लगभग 6 महीने बाद भी ये जलमार्ग बाधित है. एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे का प्रावधान और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक स्थायी जहाजरानी गलियारे की शुरुआत और होर्मुज के प्रशासनिक भविष्य के लिए किसी समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से तकनीकी मुद्दों के साथ वार्ता जारी रखेंगे. इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबावादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं. ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और ओमान अगले 30 से 60 दिन तक एक नए स्थायी और टिकाऊ जलमार्ग पर सहमति बनाने के लिए बातचीत करेंगे. होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा शुरू करने के अमेरिका के प्रयासों के ओमान के हस्तक्षेप की स्थिति में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओमान पर बम गिराने की धमकी देने के बाद यह बैठक हुई है. इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रकाश जी?
1: जैसे मैंने अनुभा जी से जिक्र किया, सिचुएशन अभी को क्लियर नहीं है मिडल ईस्ट में, और क्लियर नहीं है तो ये एंग्जाइटी का कारण तो है ही सही. तेल आज 90 के आसपास थोड़ा सॉफ्ट हुआ, कल कैसे होगा किसी को मालूम नहीं. तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये डील हो जाए. ओमान, ईरान और अमेरिका देख रहा है इसको आपस में, ताकि हमारा जो पूरे विश्व को इससे फ़ायदा है और थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रेड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा ना कुछ खराब सा हो रखा है पिछले कई महीनों से, जब से
2: ऑलमोस्ट 6 महीने
1: हो गए. तो इसलिए लेट्स होप

0: कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए, और ये सब के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अमेरिकन इकोनॉमी भी प्रॉब्लम में आ रही है, ये मिडिल ईस्ट के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री सफ़र कर रहे हैं, हमारे भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और तेल का भाव जब बढ़ता है तो जाहिर है दिक्कत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें से निकले।
1: Prakash, you are saying that, of course, everybody expects some kind of a positive, outcome from this meeting. But again, as we were discussing, it's still a very fluid situation. What is happening in West Asia for everyone? But do you think that's kind of this fact that Iran and Oman have decided to have some kind of a phased approach and discussions on the opening of Strait of Hormuz? It's I would say a silver lining. Would you call it that?
0: Well, I would tend to agree with you to some extent, because Iran and Oman cannot do anything independent of the U.S. Okay. U.S. there's a huge pressure on the U.S. administration or the U.S. government, Trump government, because of the midterm elections there. Uh-huh. People are suffering.
1: Yes.
0: Because of inflation, interest rates are really shooting through the roof, the bond yields, which represent the cost of borrowing, is crossing two decades high.
1: Yes.
0: So those economic pressures, I hope, would force the countries in the conflict to see sense, so that an amicable solution is hammered out of the Hormuz.
1: Right. Let's move on to commodities. Global crude oil prices fell to a two-week low as renewed talks between Iran and Oman raised hopes that the Strait of Hormuz could be reopened. Brent crude was trading 2.7% down at $86.20 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% lower at $80.18 per barrel when reports last came in.
2: सराफा बाजार में सोना 0.4% गिरकर 161,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 242,959 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। प्रकाश जी, एक रुख हम देख रहे हैं, कभी गोल्ड का दाम बढ़ता है तो सिल्वर का नीचे आता है, सिल्वर अगर नीचे आता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड अगर नीचे आता है सिल्वर ऊपर जाता है, ये ट्रेंड देख रहे हो। साथ में एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, आने वाली जो आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो भी बैठक होगी, उसमें क्या आरबीआई के लिए चिंता का विषय हो सकता है तमाम चीजें वैश्विक घटनाक्रमों को, और जो देख रहे हैं कि कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, जिनमें शुगर वगैरह भी शामिल है।
0: आरबीआई की मीटिंग तो अभी दूर है
2: जी,
0: लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है पिछले 15 दिन में 10 दिन में बड़ा पॉजिटिव है
2: जी,
0: और पूरे वर्ल्ड में दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हो गया है। और जहां तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज में काम आता है, एनर्जी यूसेज उसका काफी रहता है, तो गोल्ड का जो है पॉजिटिव है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें अभी और काफी रन बाकी है, और भी थोड़ा सा मजबूती आ सकती है। तो ये तो हुआ गोल्ड का। और जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई हर चीज का जायजा लेता है, क्योंकि जो वैश्विक कारण है वो तो बड़े इंपॉर्टेंट हो चले हैं ना, हम जो आजकल चल रहा है उसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते ना, ये दिक्कत है।
2: तो प्रकाश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया।
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices declines, Sensex falls nearly 200 points. Nifty settles below 24,250. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. And global crude oil prices extend downward slide. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Till then, from the entire team, goodbye. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779107500 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. In Nepal, according to an official source, 17 persons have lost their lives while 384 tourists, including over 100 Indians, are missing.

0: সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত এই অনুষ্ঠানটি শোনা যাবে দুটি ভাগে। প্রথম পর্ব সম্প্রচারিত হবে আজ রাত 8টায় গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গ DTH বাংলা পরিষেবায়। আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগের সোশ্যাল মিডিয়াতেও তা শোনা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো পশ্চিমাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলির কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নে এই অঞ্চলে নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দিল্লিতে গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল। শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে রাজ্যের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিল তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগামীকাল নিউটাউনের বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে লারসেন অ্যান্ড টুব্রো গোষ্ঠীর একটি ডেটা সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ চালু হলে রাজ্যের তরুণ পেশাদারদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। কলকাতার তিনটি হাসপাতালে আজ আচমকা পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদোত্ত মুখোপাধ্যায়। প্রথমে আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধীনস্থ বেলগাছিয়ার ইন্দিরা মাতৃ ও শিশু কল্যাণ হাসপাতালে যান তিনি। এরপর নর্থ সুবারবান হাসপাতাল পরিদর্শন করেন, হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখেন। খাবারের মান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তা অবিলম্বে উন্নত করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এরপর অবিনাশ দত্ত মেটার্নিটি হাসপাতালও পরিদর্শন করেন তিনি। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একই দিনে 10টি নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদোত্ত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন ওই হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর হার বেড়েছে। শোকজ করে এর কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। আগামীকাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। স্থানীয় সংবাদ শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে। আমাদের সংবাদ শুনে যাচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল আকাশবাণী সংবাদ বাংলা, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা এবং এক্স হ্যান্ডেল AIR নিউজ কলকাতাতে। হাওড়ার আন্দুলে বহুতল আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে অগ্নিকাণ্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে কয়েকজন আবাসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ দুপুরে ওই আবাসনের তিনতলার ওই ফ্ল্যাটে হঠাৎই আগুন লাগে, ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ, আটকে পড়েন একাধিক বাসিন্দা। কোনক্রমে দমকলকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করেন। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় বছর 65-এর গোপা মুখোপাধ্যায়ের। দমকলের 5টি ইঞ্জিন প্রায় 2 ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরুলিয়া শহরের বিভিন্ন হোটেল ও বহুতল আবাসনে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আজ অভিযান চালায় দমকল বিভাগ। হঠাৎ আগুন লাগলে কি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। কলকাতার গড়ফায় 4 বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পলাতক। জল খাওয়ানোর নাম করে ওই ব্যক্তি শিশুটিকে আবাসনের ছাদে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। চিরাচরিত ধর্মীয় রীতি মেনে আজ ঈদ এ মিলাদ উন নবী উদযাপিত হচ্ছে। পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জন্মবার্ষিকীর স্মরণে পবিত্র এই দিনটি ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন। খাদ্য, দান সামগ্রী বিতরণ ও বিশেষ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে হজরত মোহাম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। কলকাতার পার্ক সার্কাসেও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া, ইসলামপুর, মালদার ইংরেজবাজারে বিশেষ নামাজ পাঠ করেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগে আজ মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট 6-0 গোলে জর্জ টেলিগ্রাফকে হারিয়ে দিয়েছে। বিরতিতে মোহনবাগান 2-0 গোলে এগিয়েছিল। সুহেল আহমেদ ভাট হ্যাট্রিক করেছেন। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় মঞ্চকে পাথেয় করে চিরন্তন ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাস সঙ্গে নিয়ে আকাশবাণী কলকাতা আজ শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। স্থানীয় সংবাদ শেষ হল।
1: नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुआकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-9851-316-807 और 977-9709-107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचली इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोगों को बुनियादी अधिकार नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं। रावलकोट और POJK क्षेत्र के अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कथित रूप से लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि पट्टन क्षेत्र में जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। In Nepal, more than 100 Indians are among nearly 500 people reported missing in Nepal after flash floods in the Bhote Koshi River hit the Rasuwa region near the Tibet border this morning. Security officials said that so far, 46 bodies have been recovered from the flash flood hit areas. They said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, the missing people include include foreign tourists and Nepali citizens. Officials said the missing people include at least 105 Indians and 37 NRIs, with most of them headed for the Kailash Mansarovar Yatra in Tibet. They said missing foreign nationals are

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779901075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

0: सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिस

0: مجلسوں میں شامل ہوئے۔ سب سے بڑی مجلس سرینگر کے درگاہ حضرت بل میں ہوئی، جہاں پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا گیا اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی۔ ایسی ہی مجلس گھاٹی کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئی، جہاں پر لوگوں نے جموں کشمیر اور پورے ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔ آکاشوانی سماچار کے لیے میں سرینگر سے اشفاق شاہ۔
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid-e-Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet.

0: শুরু করুন, দেখবেন দেখবেন ওই 5 মিনিটটাই আস্তে আস্তে আপনার 10 মিনিটে পরিণত হবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাকশন নিতে হবে, তবে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে হ্যাবিটের সাথে পরিচিত হব, ঠিক আছে? আরেকটা যেটা উনি বলেছিলেন, যারা স্ট্রেসফুল লাইফ কাটায় যেমন পুলিশ বা দমকল কর্মী, দেখুন হ্যাঁ সত্যি ওনাদের লাইফে সবসময় নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের মধ্যেই থাকতে হয়, তারপরেও আমি বলবো যে যখন ওনারা ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসছেন সেটাকে প্রফেশনাল হিসেবেই, প্রফেশনাল জায়গা হিসেবেই দেখা, এবং বাড়িতে যখন আসছেন কোথাও গিয়ে মাথায় যে চিন্তাগুলো ঘুরছে যেগুলো আমি বের করতে পারি না, হয়তো আমি পুলিশ স্টেশনে বসে এমন একটা কেস দেখেছি যেটা খুব মর্মান্তিক, যেটা আমাকে ভুলতে পারছি না, আপনি একবার খাতায় লিখে ফেলুন, খাতায় লিখে ফেলুন, নোট ডাউন করে ফেলুন। নোট ডাউন করার ফলে ওখান থেকে কয়েকটা প্রশ্ন নিজের ইনার সেলফের কাছে রাখুন, এটাতে কি কোথাও গিয়ে আমার কিছু দায়বদ্ধতা আছে? না, নেই। এটাতে কি কোথাও গিয়ে আমি কিছু খারাপ করেছি? সেই উত্তরগুলো যখন আপনি ভেতর থেকে পাবেন, খুব ধীরে ধীরে আপনার ব্রেন রিয়েলাইজ করতে শিখবে যে ওটা আমার ওয়ার্ক প্লেস আর এটা আমার নিজস্ব জীবন। তাই কোথাও গিয়ে এই বাড়িতে আসার পর আমার নিজের সেলফকে কিছু সময় দেওয়া দরকার, এবং আমার ওয়াইফ হোক বা আমার সন্তান হোক, তাদের সাথে একটা সুন্দর সময় কাটানো দরকার।
1: ঠিক যেমনভাবে সুন্দর সময় আমরা কাটিয়ে ফেললাম, দেড় ঘন্টা দেখতে দেখতে চলে গেল, বুঝতেই পারলাম না কখন দেড় ঘন্টা চলে গেছে। আর প্রশ্ন তো কোশ্চেন ব্যাংক প্রচুর লিসনার আসছেন আমাদের কাছে, এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপেও প্রশ্ন তারা পাঠাচ্ছিলেন, তার অনেক অংশটাই আমরা কাভার করেছি। আপনি এতটা সময় দিলেন আমাদের, এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।
0: থ্যাংক ইউ।
2: শুনতে থাকুন 100.1 FM গোল্ড, বিশ্বজিৎ আর মনীষা এখনও এক ঘন্টা আপনার সঙ্গে থাকবে। ঠিক 11:10 ফিরব বেঁচে থাকার গান নিয়ে, 11:10 বেঁচে থাকার গানে। আজ এমন একজনের কথা যার জীবন আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবে, যার জীবন শেখাবে একটাই মানব জীবন কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। শুনতে থাকুন আমাদের।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিনয় সাক্সেনা। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे, अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए, बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
4: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर

0: बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal." Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779709107500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान

0: से आपातकालीन सामग्री, अस्थाई आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977-985-131-6807, +977-970-910-7500 and +977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation.